और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। ये इंतबाह हूसियों की जानिब से सऊदी दारुलहुकूमत रियाद के बैन अलाक़वामी हवाई अड्डे पर हमले के बाद दिया गया है। हफ्ते के आखिर में होने वाले इन हमलों में 14 अफराद हलाक और 300 से ज्यादा जख्मी हुए थे। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान की वजह से सऊदी हुकाम ने हवाई अड्डे की बंदिश में 17 अक्टूबर तक तोसी कर दी है। यमन की अबूरी हुकूमत के हामी सऊदी क्यादत वाले इतिहाद ने पीर के रोज ऐलान किया कि रियाज की तरफ दागे गए एक हूसी मिजाइल को फजा में रोक लिया गया। हफ्ते के रोज नामानिगारों की जानिब से पूछे जाने पर कि आया अमरीका हूसियों के खिलाफ सऊदी अरब की फौजी मुहिम में शामिल होगा, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, ये हो सकता है, हम इसका जायजा लेंगे। जापान की बरकी मसनूआत साज कंपनी NEC ने मुकम्मल तौर पर मसनूई जहानत से चलने वाला एक बगैर इंसानी अमले का शोबा कायम किया है ताकि ये जांचा जा सके कि इंतजामी उमूर में इसे किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस महकमे में सरबराह शोबा से लेकर तमाम ओहदों पर 39 AI एजेंट्स तैनात हैं जिन्हें उनके मुकर्रर का किरदार के मुताबिक नाम दिए गए हैं। AI कारकुनान रिपोर्टें तैयार करते हैं और मालूमात इकट्ठा करके हतमी फैसले करने वालों की मदद करते हैं। इसमें मालियात का तज्जिया करने के लिए माहाना फरोख्त का जायजा लेना शामिल है। वो पुराने रिकॉर्ड से ये हिसाब लगाते हैं कि ग्राहकों को अगली बार अपना सिस्टम अपडेट करने की ज़रूरत कब होगी और इसके मुताबिक वो वक्त से पहले ही ग्राहकों की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। AI अमला हर सुबह हरीफ कंपनियों से मुतालिक खबरें भी चेक करता है। ये शोबा अहदाफ पर पेशरफ्त को जांचने और मुस्तकबिल के चैलेंजों का खुलासा करने के लिए हफ्ते में एक बार आला इंतजामी इजलास मुनक़िद करता है। NEC के हुकाम का कहना है कि एक AI मुलाजिम ने नंबर दर्ज करने में गलती होने के बाद एक AI अफिसर ने उसका इंटरव्यू किया ताकि ऐसी गलती दोबारा होने से रोकने के इकदाम पर बात की जा सके। कंपनी के हुकाम का कहना है कि वो AI अमले के किरदार को बढ़ाना चाहते हैं और इस साल शोबे में सैकड़ों AI एजेंट्स शामिल करेंगे। मिस्र के उन स्कूलों में जापानी जबान की क्लासें शुरू हो गई हैं जिन्होंने जापानी तर्ज तालीम के तरीकों को अपनाया है। मिस्र में ऐसे सरकारी स्कूल मौजूद हैं जहां बच्चे सफाई, जमाती इजलासों, बारी बारी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां निभाने समेत दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं जो जापानी स्कूलों में आम हैं। इस मुल्क ने तालीमी इस्लाहात के एक हिस्से के तौर पर 2018 से अब तक ऐसे 100 से ज्यादा मिस्र जापान स्कूल कायम किए हैं जिनमें नज्म व ज़ब्त और बाहमी तआवुन पर जोर दिया जाता है। कुछ वालदेन की दरख्वास्तों के बाद सितंबर में 10 स्कूलों में आजमाइशी बुनियादों पर जापानी जबान की क्लासों का आगाज हुआ। पीर को जापानी ज़राए इब्लाग को शुमाली मिस्र के शहर स्वीस के एक स्कूल में 7वीं जमात के तलबा की पढ़ाई का मुशाहिदा करने के लिए मदऊ किया गया। तलबा ने जापानी जबान के मिस्री उस्ताद के साथ गाने के जरिए जापानी जबान में 1 से 10 तक गिनती की मशक की। उन्होंने जापानी जबान में अपना तारुफ कराने का तरीका भी सीखा। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

0: म्यूजियम पहुंच गए। उन्होंने शुरिकेन या निंजा स्टार फेंकने की कोशिश करने का फैसला किया और इसके लिए कतार में लग गए। शुरिकेन एक छोटा सा धाती सितारा नुमा हथियार होता है जिसका हर कोना तेज धार का हामिल होता है।
1: जमाने कदीम के निंजा ये सितारा नुमा हथियार इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसे निंजा स्टार कहते हैं। तो आइए सबक नंबर 33 का मकालमा सुनते हैं।
2: どのくらい待ちますか
3: ?15 分くらいです。
2: わかりました。
3: すごい!本物の手裏剣だ!
4: あの的に投げてください。
3: えい!
2: ああ、落ちちゃった。
1: あばみすまかるめきわざはつかってへん。
0: マイク、アムレセプチタヘ。कि शुरिकेन फेंकने की बारी आने में कितना वक्त लगेगा?
2: दोनों कुराइ माचमस का?
1: कितना इंतजार करना होगा?
0: अमले का फर्ज जवाब देता है।
3: 15 फुन कुराइ देस।
1: तकरीबन 15 मिनट।
0: माइक कहता है।
2: वाकरिमस्ता।
1: ठीक है।
0: बारी आने पर काइतो निंजा स्टार हाथ में लेता है और पुरजोश अंदाज में कहता है।
3: सुगोई, होममोनो नो शुरिकेन दा।
1: हैरत अंगेज, असली शुरिकेन है।
0: अमला दोनों को तरीका समझाता है।
4: あの的に投げてください。
1: उस निशाने पर फेंके।
0: माइक शुरिकेन फेंकता है।
3: えい、
1: えい。
2: ああ、落ちちゃった。
1: अरे, नीचे गिर गया।
0: चंद मीटर दूर निशाने पर निंजा स्टार फेंकना माइक की तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। उसका निंजा स्टार निशाने में पैवस्त होने के बजाय जमीन पर गिर गया।
1: लेकिन ये दोनों के लिए एक अच्छा तजुर्बा था।
0: आज के सबक का कलीदी जुमला है कितना इंतजार करना होगा।
2: दोनों कुराई माचमस का।
0: इसके जरिए आप किसी काम में लगने वाले वक्त के बारे में पूछ सकते हैं।
1: अब हम आज के कलीदी जुमले की तशरीह करते हैं। दोनों कुराई यानी कितनी देर, माचीमस का ये दरअसल फेल मात्स यानी इंतजार करना की मात शकल माचीमस के बाद सवाल को जाहिर करने वाला का लगाकर बनाया गया है। इसका मतलब हुआ कि कितनी देर इंतजार करना होगा। और अब आज का नुक्ता। आज के मकालमे में दोनों कुराई यानी कितनी देर वक्त के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये लफ्ज फासला या रकम पूछने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
0: मकालमे में चूंकि माइक ये जानना चाहता है कि बारी आने तक कितना इंतजार करना होगा, इसलिए उसने फेल मत्स यानी इंतजार करना इस्तेमाल करते हुए पूछा है दोनों कुराई माची मस का। तो सामीन, अब वक्त हुआ है मश का, सुनिए और दोहराइए।
5: どのくらい待ちますか?
0: जी सामीन, उम्मीद है कि आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
1: और अब इंतजार से मुतालिक एक मकालमा सुनिए। एक मुसाफिर टैक्सी में हवाई अड्डे की जानिब जा रहा है, लेकिन सड़क पर भीड़ के बायस टैक्सी की रफ्तार बहुत कम है।
6: すみません, あとどのくらいかかりますか?
4: 20分くらいです。
1: अब इस मकालमे की तशरीह।
6: すみません, あとどのくらいかかりますか?
0: माफ कीजिएगा, मजीद कितनी देर लगेगी?
1: すみません, ये तो आप पहले सीख चुके हैं कि ये किसी को मुतवज्जे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आतो के मायने हैं अभी और या मजीद। ककारिमास फेल ककारू यानी लगना की मास शक्ल है। ये फेल भी वक्त के अलावा फासले या रकम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
4: 20 くらいです,
0: तकरीबन 20 मिनट।
1: 20 के मायने हैं 20 मिनट और कुराई यानी तकरीबन।
0: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
5: दोनों कुराई ककारिमास का? आतो दोनों कुराई ककारिमास का?
1: अब एक और सूरत हाल में पूछने की मशक करते हैं। आपने किसी से पूछा कि फलां जगह जाने में बस से कितनी देर लगेगी। उसने बताया कि पैदल जा सकते हैं। अब आप ये पूछना चाहते हैं कि कितनी देर चलना होगा। फेल चलना की जापानी है आरुकु और उसकी मस शक्ल है
5: आरुकिमास, आरुकिमास।
1: तो सामीन कोशिश कीजिए।
7: दोनों कुराई आरुकिमास का? दोनों कुराई आरुकिमास का?
0: जी सामीन, यकीनन आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
1: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मशक का। आज हम वक्त के दौरानी से मुतालिक अल्फाज बताएंगे।
0: आज के मकालमे में इंतजार के लिए लगने वाला वक्त जूगो हूं कुराई यानी तकरीबन 15 मिनट बताया गया था, ठीक है ना?
1: जी बिल्कुल ठीक। मिनट को कहते हैं फुन, ये अदद के बाद लगाया जाता है। मसलन 5 मिनट को गोफुन और 10 मिनट को जुपुन कहते हैं। समीन आपने गौर किया कि 10 यानी जू के साथ मिनट यानी फुन लगाने से ये जू फुन नहीं बल्कि जुपुन बनता है।
0: समीन अब ये सुनिए और दोहराइए।
1: 5 मिनट
8: गोफुन,
1: 10 मिनट
8: जुपुन,
1: 15 मिनट
8: जूगोफुन,
1: 20 मिनट
8: निजुपुन।
1: अब कुछ घंटों के बारे में। घंटे की जापानी है जिकान। घंटों में वक्त बताने के लिए अदद के बाद जिकान लगाया जाता है। मसलन 1 घंटे के लिए इची जिकान, 2 घंटों के लिए नी जिकान। अलबत्ता कुछ हिंसों के साथ तलफ़ुज़ कुछ मुख्तलिफ है, इनमें एहतियात करें। मसलन 4 घंटों के लिए यो जिकान, 7 घंटों के लिए शिची जिकान और 9 घंटों के लिए कुजिकान।
0: जी सामीन अब ये सुनिए और दोहराइए।
1: 1 घंटा
8: इची जिकान,
1: 2 घंटे
8: निजिकान,
1: 3 घंटे
8: सांजिकान,
1: 4 घंटे
8: योजिकान,
1: 7 घंटे
8: शिचिजिकान,
1: 9 घंटे
8: कुजिकान।
1: अच्छा हीरा ये बताइए कि 1.5 घंटे को क्या कहेंगे?
0: 1.5 घंटा यानी 1 घंटा 30 मिनट, तो ये होगा इचिजिकान सांजिपुन।
1: बिल्कुल ठीक, लेकिन सांजिपुन यानी 30 मिनट की बजाय एक और लफ्ज हान यानी आधा इस्तेमाल करते हुए 1.5 घंटे को इचिजिकान हान भी कहा जा सकता है।
0: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनिए, उस हिस्से पर खसूसी ध्यान दें जिसमें माइक दरियाफ्त कर रहा है कि कितना इंतजार करना पड़ेगा।
2: どのくらい待ちますか?15分くらいです。わかりました。すごい!本物の手裏剣だ!あの的に投げてください。えい!ああ、落ちちゃった。
9: マイクと一緒にポップカルチャー。
0: अब माइक के साथ पॉप कल्चर का कॉर्नर। आज का मौजू अपनी शमूलियत वाली सियाहत है।
1: जापान में सयाह मुख्तलिफ सरगर्मियों में खुद भी शिरकत कर सकते हैं।
0: जी आज का मकालमा माइकल काइतो के शुरिकेन या निंजा स्टार फेंकने के इवेंट में शिरकत से मुतालिक था।
1: ऐसी और भी कई सरगर्मियां हैं जिनमें सयाह शिरकत कर सकते हैं। इनमें निंजा या सामुराई का भेस बदलने के अलावा किमोनो पहनना, चाय की तकरीब में शिरकत, फूलों की सजावट का फन इकेबाना और जापानी मिठाई बनाना मकबूल सरगर्मियां हैं। सयाह ऐसी आम सरगर्मियों से हटकर बिल्कुल मुख्तलिफ सरगर्मी में भी शिरकत कर सकते हैं।
0: बिल्कुल मुख्तलिफ? मसलन किस तरह की?
1: मसलन रेस्तरानों के शो विंडो में सजे हुए अशिया खुर्दनी के नमूने तो आपने देखे ही होंगे।
0: जी हाँ, प्लास्टिक से तैयार किए जाने वाले ये नमूने बिल्कुल असली खानों जैसे ही लगते हैं।
1: सयाह प्लास्टिक के ये नमूने बनाने के इवेंट में शिरकत कर सकते हैं और सानेहात से बचाव की मालूमात में इजाफे के लिए जापानी अंदाज की मखसूस सहूलियात में जलजले, शदीद बारिश, आग या सुनामी के सिमुलेशन में शिरकत भी मुमकिन है।
0: ये सरगर्मियाँ दिलचस्प होने के साथ साथ हंगामी सूरतेहाल की तैयारी के लिहाज से भी मुफीद हैं।